गुरुभ्यो नमः श्रीकुलदेवतायै नमः अभिघ्नमस्तु ओम नारायणाय नमः ओम नरायन नरोत्तमाय नमः ओम सरस्वती देव्यै नमः ओम वेदव्यासाय नमः अस्य श्री चंडी कवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः

ओम मार्कण्डेय उवाच ओम यद्गुह्यं परमलोके सर्वरक्षाकरणाम् यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह ब्रह्मोवाच अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृणुष्व महामुने प्रथमं शैलपुत्रीति द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकम् पञ्चमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रिश्च महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिताः उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतोरणे विषमे दुर्गमे चैव भयार्ता शरणं गताः न तेषां जायते किञ्चिदशुभं रणसङ्कटे नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं नहि यैस्तु भक्त्या स्मृता नूनं तेषां सिद्धि प्रजायते प्रेतसंस्थातु चामुण्डा वाराही महिषासना ऐन्द्री गज समारूढा वैष्णवी गरुडासना माहेश्वरी वृषारूढा कौमारी शिखिवाहना ब्राह्मी हंस समारूढा सर्वाभरणभूषिता

शत्रुणां भयवर्धिनी प्राच्यां रक्षतु मामैन्द्री अग्नेयाम् अग्निदेवता दक्षिणेवतु वाराही नैऋत्यां खड्गधारिणी

तथा एवं दश दिशो रक्षे चामुंडा शववाहना जया मे अग्रतस्तातु विजयास्तातु पृष्ठतः अजिता वाम पार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता शिखा मे द्योतिनी रक्षे दुमा मूर्ने व्यवस्थिता माला धरी ललाटे च भ्रुवो रक्षे यशस्विनी त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये यमघंटा च नासिके शंखिनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोर्द्वारवासिनी कपोलौ कालिका रक्षेत् कर्णमूले तु शंकरी नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका अधरे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती दन्तान् रक्षतु कौमारी कण्ठमध्ये तु चण्डिका घण्टिकां चित्रघण्टा च महामाया च तालुके कामाक्षी चिबुकं रक्षेद्वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी नीलग्रीवा बहित्कण्ठे नलिका नलकूबरी खड्गधारिण्युभौ स्कन्दौ बाहू मे वज्रधारिणि हस्तयोर्दण्डिनी रक्षेदम्बिका चाङ्गुलीस्तथा नखाई शूलेश्वरी रक्षे कुक्षौ रक्षे नरेश्वरी स्तनौ रक्षेन्महालक्ष्मीर्मनश्शोक विनाशिनी हृदयललिता देवी उदरौ शूलधारिणि नागौ च कामिनी रक्षे गुह्यं गुह्येश्वरी तथा कट्यां भगवती रक्षे जानुनी विन्ध्यवासिनी भूतनाथा च मेढ्रं मे उरु महिषवाहिनी जङ्घे महाबला प्रोक्ता सर्वकामप्रदायिनी गुल्फयोर्नारसिंही च पादौ चामिततेजसी पादाङ्गुली श्री

पादादस्तलवासिनी नखान्दंष्ट्राकराली च केशांश्चैवोर्ध्वकेशिनी रोमकूपेषु कौबेरी त्वचं वागीश्वरी तथा रक्तमज्जावसामासान्यस्ति मेधांसि पार्वती।

समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ।

गले सर्वहि वज्रहस्ता इंद्रशक्ति ऐरावतारूढ़ शोभति सहस्रनेत्रे विराजति शक्र जैसा।

श्रोताओं अभी सुनते हैं पारंपरिक भक्ति रचना। संगीत है श्रीनिवास खड़े जी का और स्वर है पंडित भीमसेन जोशी जी का।

0: आपण ऐकत आहात इंटरनेट रेडिओ स्टेशन भक्तीसुधा, आत्मोन्नतीचा आध्यात्मिक प्रवास।
1: श्रोताओं प्रस्तुत कर रहे हैं हिंदी भक्ति गीतों का कार्यक्रम भक्ति सुमन।
0: श्रोताओं अब सुनिए संत मीराबाई की भक्ति रचना। इसे संगीत से सवारा है पंडित हृदयनाथ मंगेशकर जी ने और इसे गाया है लता मंगेशकर जी ने।

श्रोताओं सुनते हैं मुरली मनोहर स्वरूप जी के संगीत निर्देशन में एक भक्ति रचना। गीत और स्वर है हरिओम शरण जी का।

आइए सुनते हैं शैलेंद्र जी की भक्ति रचना। इसे संगीत से संवारा है शंकर जयकिशन ने और इसे गाया है मन्ना डे और साथियों ने।

श्रोताओं अभी सुनते हैं आनंद बख्शी की गीत रचना। संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का और स्वर है मोहम्मद रफी और आशा भोसले।

अब सुनते हैं पंडित हृदयनाथ मंगेशकर जी के संगीत निर्देशन में संत मीराबाई की भक्ति रचना। स्वर है लता मंगेशकर जी का।

ओम मार्कण्डेयोवाच ओम यद्गुह्यं परमलोके सर्वरक्षाकरणाम् यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। ब्रह्मोवाच अस्ति गुह्यतम विप्र सर्वभूतोपकारकम् देव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृणुष्व महामुने। प्रथमं शैलपुत्रीति द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति ऊष्माण्डेति चतुर्थकम् पंचमो स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रिश्च महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिताः। उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना। अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतोरणे विषमे दुर्गमे चैव भयार्ता शरणं गताः। न तेषां जायते किञ्चिदशुभं रणसङ्कटे नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं नहि। येस्तु भक्त्या स्मृता नूनं तेषां सिद्धि प्रजायते। प्रेतसंस्थातु चामुण्डा वाराही महिषासना ऐन्द्री गज समारूढा वैष्णवी गरुडासना माहेश्वरी वृषारूढा कौमारी शिखिवाहना ब्राह्मी हंस समारूढा।

क्षे शत्रूणां भयवर्धिनि प्राच्यां रक्षतु मामैन्द्री अग्नेयाम् अग्निदेवता दक्षिणेवतु वाराही नैऋत्यां खड्गधारिणी प्रतीच्यां वारुणी रक्षेद्वायव्यां मृगवाहिनी उदीच्यां रक्षकौबेरी ईशान्यां शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षेद्दधस्ताद् वैष्णवी तथा एवं दश दिशो रक्षेत् चामुण्डा शववाहना जया मे अग्रतस्तातु विजयास्तातु पृष्ठतः अजिता वाम पार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता शिखा मे द्योतिनी रक्षे दुमामूर्ने व्यवस्थिता मालाधरी ललाटे च भ्रुवौ रक्षे यशस्विनी त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये यमघण्टा च नासिके शङ्खिनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोर्द्वारवासिनी कपोलौ कालिका रक्षेत् कर्णमूले तु शङ्करी नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका अधरे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती दन्तान् रक्षतु कौमारी कण्ठमध्ये तु चण्डिका घण्टिकां चित्रघण्टा च महामाया च तालुके कामाक्षी चिबुकं रक्षेद्वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी नीलग्रीवा बहिःकण्ठे नलिका नलकूबरी खड्गधारिण्युभौ स्कन्दौ बाहू मे वज्रधारिणि हस्तयोर्दण्डिनी रक्षेदम्बिका चाङ्गुलीस्तथा नखाञ्चुलेश्वरी रक्षे कुक्षौ रक्षे नरेश्वरी स्तनौ रक्षेन्महालक्ष्मीर्मनश्शोकविनाशिनी हृदयललिता देवी उदरौ शूलधारिणी नागौ च कामिनी रक्षे गुह्यं गुह्येश्वरी तथा कट्यां भगवती रक्षे जानुनी विन्ध्यवासिनी भूतनाथा च मेढ्रं मे उरु महिषवाहिनी जङ्घे महाबला प्रोक्ता सर्वकामप्रदायिनी गुल्फयोर्नारसिंही च पादौ चामित तेजसि पादाङ्गुली श्री मे रक्षेत् पादाधस्थलवासिनि नखान्दंष्ट्राकराली च केशांशैवोर्ध्वकेशिनि रोमकूपेषु कौबेरी त्वचं वागीश्वरी तथा रक्तमज्जावसामासान्यस्ति मे रांसि पार्वती

श्रोताओं अभी सुनते हैं पारंपरिक भक्ति रचना। संगीत है श्रीनिवास खड़े जी का और स्वर है पंडित भीमसेन जोशी जी का।

ले सर्वहि वज्रहस्ता इंद्रशक्ति ऐरावतारूढ़ शोभति सहस्रनेत्रे विराजति शक्र जैसा तैसा

0: आपण ऐकत आहात इंटरनेट रेडिओ स्टेशन भक्तीसुधा, आत्मोन्नतीचा आध्यात्मिक प्रवास।
1: श्रोताओं प्रस्तुत कर रहे हैं हिंदी भक्ति गीतों का कार्यक्रम भक्ति सुमन।
0: श्रोताओं अब सुनिए संत मीराबाई की भक्ति रचना। इसे संगीत से सवारा है पंडित हृदयनाथ मंगेशकर जी ने और इसे गाया है लता मंगेशकर जी ने।

श्रोताओं सुनते हैं मुरली मनोहर स्वरूप जी के संगीत निर्देशन में एक भक्ति रचना। गीत और स्वर है हरिओम शरण जी का।

आइए सुनते हैं शैलेंद्र जी की भक्ति रचना। इसे संगीत से संवारा है शंकर जयकिशन ने और इसे गाया है मन्ना डे और साथियों ने।

श्रोताओं अभी सुनते हैं आनंद बख्शी की गीत रचना। संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का और स्वर है मोहम्मद रफी और आशा भोसले।

अब सुनते हैं पंडित हृदयनाथ मंगेशकर जी के संगीत निर्देशन में संत मीराबाई की भक्ति रचना। स्वर है लता मंगेशकर जी का।

श्रोताओं अभी सुनते हैं पारंपरिक भक्ति रचना। संगीत है श्रीनिवास खड़े जी का और स्वर है पंडित भीमसेन जोशी जी का।